0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और यह लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया वांगचुक की पंक्ति गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग राजीव चौक पटेल चौक रामकृष्ण आश्रम मार्ग बाराखंबा रोड सुप्रीम कोर्ट सेवा तीर्थ जनपद झंडेवालान और मंडी हाउस केंद्रीय सचिवालय आईटीओ दिल्ली गेट इंद्रप्रस्थ खान मार्केट जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं हालांकि राजीव चौक मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं जो आपसी विश्वास सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण औषधि स्वास्थ्य सेवा नवीकरणीय ऊर्जा हरित हाइड्रोजन कृषि उत्पादन उर्वरक विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्रीराम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भारत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

0: प्रकार लक्ष्य को व्यापक दूरता और उच्चता सीमा मध्य ध्वंस करिवार क्षमता रही। कुसार एक सफल उड़ाण परीक्षण लगी एपृक्त वैज्ञानिक मान अभिनंदन जनवा सहित यह डीआरडीओ लगी एक गुरुत्वपूर्ण माइलखुंट बोली प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते। यहाद्वारा देशर वायु प्रतिरक्षा क्षमता उल्लेखनीय भाव सशक्त हो पार बोली श्री सिंह मतव्यक्त कर। केन्द्र सरकार विभिन्न मंत्रालय और विभागगुड़िकर सचिव स्तर में केतक अदल बदल कर। उच्चशिक्षा मंत्रालय सचिव विनीत जोशी को पंचायतराज सचिव भाव निजुक्ति दि जाएगी। नरेश पाल गंगवार उच्चशिक्षा मंत्रालय नूतन सचिव भाव निजुक्ति पाई। से सुशील कुमार लोहानी को पशु संपद और दुग्ध मंत्रालय सचिव भाव निजुक्ति दि जाता बेले सहरांचल व्यापार सचिव काति किथाला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वांचल विकास मंत्रालय सचिव भाव दायित्व दि जाएगी। केन्द्र कैबिनेट निजुक्ति कमिटी यह निजुक्तिगुड़ी को अनुमोदन प्रदान कर। पुरी रे आज चतुर्धा मूर्ति बाहुड़ा यात्रा अनुष्ठित होउछि। नवदिनात्मक यात्रा शेषक श्रीजीव मैंने जन्मवेदी रत्नवेदी को बाहर। श्रीगुंडीचा मंदिर में गतकाल राति पोहड़ नीति करीविग्रह मानकर श्रीमुख खंडुआ संपन्न होता। बाहुड़ा यात्रापाई आज भोर्रु मंगल आरती मैलम तड़पलागी रोषहोम अवकाश सूर्यपूजा मंगलार्पण और द्वारपल पूजा करोरलागी नीति कर। प्राय 12:30 मध्य बाहुड़ा पहंडी होपराह 3:30 मिनिट्रे छेरापहरा नीति सह चारमाला फिटा जाई घोड़ा जचा जीव एवं अपराह्न प्राय 4 बेले रथटणा आरंभ हेबो बोली आम संवाददाता जणाइछन्ते। बाहुड़ा यात्रा को श्रृंखलित भावे संपन्न करिबा पाई पुलिस पक्षरु समस्त प्रस्तुति करा जाइथिबा बेले गत संध्यारु ट्राफिक कटकणा लागू होईछि। आसंता काली महाप्रभुंक सुनावेश रविवार दिन रथ उपरे अधरोपणा नीति संपन्न करा जाय सोमवार दिन नीलाद्रि विजय करा जीव। देशव्यापी मौसुमी स्थिति उपरे स्वराष्ट्र व्यापार मंत्रालय सक्रिय भावे नजर रखिछि। ए संपर्क में मंत्रालय पक्ष जारी करा जाइथिबा एक बिबृति रे कहा जाइछि प्रबल वर्षा जो उत्पन्न आह्वान को मुकाबला करिबा लागि प्रभावित राज्य और केन्द्रशासित अंचल गुडी समस्त प्रकार सहायता जोगाई दिया जाउछि। जुलाई मासरे नागालैंड अरुणाचल प्रदेश पश्चिमबंग आसाम गुजरात महाराष्ट्र दादरा और नगर हवेली दामन और जम्मू काश्मीर में प्रबल वर्षा होगा सहित भूस्खलन संपर्क में ए बिबृति सूचना दिया जाएगी। गृह मंत्रालय समन्वित नियंत्रण कक्ष विभिन्न राज्य और जिला जरूरीकालीन परिचालना केन्द्रगुड़िक सहित समन्वय रक्षा कर समयोपयोगी सूचना प्रदान करुच्ची। भारतीय पाणीपाग विभाग केन्द्रीय जल आयोग और भारतीय जातीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र भली केतक केन्द्रीय संस्थागुड़िक सहित स्वराष्ट्र व्यापार मंत्रालय समन्वय स्थापन कर। हरारे ठारे गतकाल अनुष्ठित प्रथम T20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच रे भारत जिम्बाब्वे को 7 विकेट रे परास्त करिछि। एथसहित भारत वर्तमान 1-0 सीरीज अग्रणी रही। टॉस जीति भारत प्रथम बोलिंग करिवार निष्पत्ति नेइथिला। प्रथम बैटिंग करी जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर रे 7 विकेट हराई 125 रन करिथिला। 126 रन रो विजय लक्ष्य को पीछा करी भारतीय दल 13 ओवर और 2 बॉल रे आवश्यक रन संग्रह करिनेइथिले। दल पक्षरु वैभव सूर्यवंशी मात्र 19 बॉल रु अर्धशतक हासिल करिथिले। एई 3 मैच विशिष्ट T20 सीरीज रो द्वितीय मैच आसंता काली हरारे ठारे खेला जिवो। मुख्य संवाद गुड़िक पुणी थरे। प्रश्नपत्र प्रघट घटन फास्ट ट्रैक अदालत स्थापन संपर्कित चिठा प्रस्ताव आज उपस्थापित हेबो केन्द्र कैबिनेट रे कहिले प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति रोमानिया गस्त अवसर में दुई देश मध्य 3 बुझामणा पत्र स्वाक्षरित। हरारे ठारे अनुष्ठित प्रथम T20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच रे जिम्बाब्वे को 7 विकेट रे परास्त कला भारत। संवाद शेष होला।
1: आकाशवाणी कटक एतेबेले जे सुनुथिले कार्यक्रम प्रचार कलो आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। कार्यक्रम प्रसारित हेउछि आकाशवाणी पुरी केन्द्ररो 103.4 FM रे। प्रचार करुछु पुरी परिक्रमा कार्यक्रम। उपस्थापना करिछन्ती राजश्री साहू। प्रयोजना करिछन्ती दिलीप कुमार नायक।

0: रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
1: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल

0: असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय

इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज
4: धन्यवाद विशाल पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ शुरू हुए बड़े बदलाव गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए दो साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच दो वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनका आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का यह बयान जनसत्ता में है फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए
3: धन्यवाद फरहत और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ नमस्कार
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape.

अस्मि नित्यं श्रोता बंधु महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथंकर दिव्य श्रीक्षेत्र धाम रे जो परम पावन धाम आज लीला लगी बाहुड़ा जात्रार लीला आपण माने श्रवण करुथिले आमर बरेण्य घोषक मानंक पाखरु क्षेत्रर महिमा सहित श्रीक्षेत्रर परिवेश सहित आपण मानकु से माने जोडुथिले तेबे आमर एई बळगंडी छक निकटरे जो परिवेश बड़दाण्डर रहिछि आपण माने अभिभूत हेबे से परिवेश सहित मिसिले प्रथमरे एई क्षेत्रर एई स्थानर जो विशेषता रहिछि जे कि भक्त सालबेग जे महाप्रभु को आकुल प्रार्थना करी कहिथिले आहे नील शैल प्रबल मत्त बारण मो आरत नलिनी बनकुकल दल से महाप्रभु को जो प्रार्थना करिथिले आकुल निवेदन महाप्रभुंकर दिव्य नंदीघोष

अटकी जाइथिला से कथा एई आमर केन्द्र आगरे भक्त सालबेगंकर समाधि पीठ बड़दाण्डर एभरी भक्त टीए सीए समाधि पीठ अवस्थित बड़ छता जो बलगंडीर आम सम्मुख भागरे छता मठ बलगंडी छता मठ ताहा गोटे धार्मिक अनुष्ठान टीए विराजमान करुछि एवं आम केन्द्र सम्मुख भागरे अनेक हजार हजार संख्या रे श्रद्धालु माने गोटे वर्णर मुंडरे सबु टोपी लगेइछंती कौनसी एक संस्था तांगो प्रदान करिछंती आउ अन्न छत्र मध्य किछि किछि श्रद्धालु दान करुछंती जल बंटन करा जाउछि आरक्षी बाहिनी सेमानंकर जत्न नेउछंती आउ अग्निशम विभाग सेमाने मध्य आम केन्द्र आगरे प्रस्तुत रहिछंती महाप्रभुंक सेवारे समस्ते जणे जणे सेवक भावरे निजको अनुभव आणुछंती किछि छोट छोट दोकानी माने सेमाने विभिन्न प्रकार द्रव्य सबु बिक्री करुछंती कहीं रथ आसिले से माने आउ बसी पारिबे नाही नड़िया रही एवं

0: ए बार्ता पहुँचाऊ वास्तव में श्रोता बंधु महाप्रभु जे आम पाई केते बरेण्य महाप्रभु ए जाति पाई केते गर्व गौरवर आम मुरबी भाव में विराजमान करती ताकू आम समस्ते अनुभव करुचे आपण माने मानस चक्षुरे ये श्राव्य भाव को ग्रहण करी महाप्रभु को लय लगातु एवं भक्तिर सहित आज ये पवित्र उत्सव आपण माने निजक संयोजित रखी था पुणी आम आपण निकट को आसुचु वर्तमान प्रथम केन्द्र को आपण मानक फेरे नौ से आपण मैंने श्रवण करेंगे महाप्रभु दिव्य बार्ता को जय जगन्नाथ
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। धन्यवाद प्रताप बाबू आपण दुईज जाक भाष्यकार बड़ सुंदर भाव से आपणकर सूचना दौले जहाँ आप देखुं महाप्रभु लीलार महात्म्य सहित से स्थान परिवेश आपण दृष्टि जी आसूची आपण ताको संग्रह कर श्रोता मान पाखे पहुँचले। श्रोता बंधु आपण जानती जे केवल आकाशवाणी पूरी बड़दाण्डु आपण को ये धारा बरणी सुनाऊँगी अन्य कौनसी दृश्य मध्यम आपण जहाँ भी देखुं से सीधा सड़क प्रत्यक्षदर्शी धारा बरणी नुहे से कैमेरा संग्रह कर से दृश्य सब पहुँचला भाष्यकार मैंने तांकर स्टूडियो भितर बसिक आपण मानक धारा बरणी दौरान श्रीक्षेत्र गुंडीचा जात्रा अवधि जिते सबू घटना घटे से सबू घटना को जोड़िया आखिरे संग्रह करवा कष्टर आमर तो बेले बेले मन हुए आमर मुंड जाक आखि ही जानता कि आम जिते पारू से देखत और जहाँ देखत आपण को कहतु मात्र दुईट आखि प्रभु देमको से दुईट आखिरे चारिपट को आखि बुले बुले बुले बुले जहाँ संग्रह आम करुचु बा जहाँ मंत्र भितर स्फुरण ताकु आपण मानक शुणु आपण जानती वर्तमान रथ सरधाबाली पाखरु बड़ शंख जाए तीनोटी रथ सम्मुखरे प्रबल जनसमुद्र सृष्टि है आम जितेबले साढ़े पांचटा बेले यही स्थान आसिक पहुँचल आप देखु साढ़े आठटा बेले आम धारा बरणी दवा आरंभ कलु कि आम पहुँचलु केन्द्र में साढ़े पांचटा बेले तीन घंटा पूर्वर तार कारण कौन तार कारण हूँ ये जो सुरक्षा बलय भेद कर आउ सरदा बाली में पहुँचवा सहज नुहे तेणु जिते शीघ्र आसवे आप निर्विघ्न आसीपर ना सुरक्षा कटकण से पड़जे आपण जिते आपण पास था अनुमति पत्र था सुरक्षा बाहन आपण को छाड़े ना आपण निर्धार्य स्थान में पहुँची पारे ना बड़ कष्टर कार्य ये तथापि महाप्रभु करुणु सब भलरे भलरे चली आम आसला बेलू सरदा बाली फांका फांका थिला किंतु वर्तमान मात्र चारि घंटा समय भितर छटू आरंभ कर साढ़े तीन घंटा हो गला तीन घंटा भितर सरदा बाली ठार बड़ शख जाए समग्र अंचल जनसमुद्र परिणत हो गला सब वर्ष यही हुए आपण जानती आमर भाष्यकार मैंने कहते आपण को बाहुड़ा जात्रा संपर्क मानुषी लीला प्रभु आसती ये हूँ जात्रा जात्रा उत्सव भितर पार्थक्य हूँ जात्रा मानक स्वयं दिय मैंने आसती आपण दोल जात्रा कहतु ठाकुराणी जात्रा कहतु गुंडीचा जात्रा कहतु स्नान जात्रा कहतु जिते जात्रा आपण कहे शीतलष्ठी जात्रा कहतु जात्रा कहार मान है निश्चित भाव में ठाकुर मैंने विराजमान करेंगे तेणु से दृष्टि ये जो जात्राटी अनुष्ठित हो बहुत ना अच्छी आपण पतित पावन जात्रा दशावतार जात्रा घोष जात्रा जन्मवेदी जात्रा अंतर्वेदी जात्रा एमती नाना प्रकार ना आपको दिहि तेणु ये जात्रा दिहि बाहुड़ा जात्रार गोटे बड़ विशेषत्व कौन जानती गुंडीचा आमर गुंडीचा मंदिर जो महाप्रभु श्रीमंदिर भितर बाहर आसती बाहुड़ा रो सात दिन काल अवस्थान करती आड़प मंडपरे इटा या भितर गोटे सांस्कृतिक ऐतिह व सांस्कृतिक कारण अच्छी से कारण हूँ जो शबर परंपरारु जो शबर संस्कृति रु महाप्रभु ब्राह्मण्य संस्कृति भितर को आसिले वैदिक देवतार से परिणत हेले पुणी थरे से शबर परिवेश को से शबरायत संस्कृति को फेरई देवाई बाहुड़ा जात्राटी गोटे सुजोग दिए आपण जानते समस्ते आड़प मंडपर महाप्रभु जो अवस्थान करती आपण जानते स्नान पूर्णमी ठार आरंभ कर नीलाद्रि विजय पर्यंत महाप्रभुंकर सेवा महाप्रभुंकर नीतिकांति कौ मैंने करती दईता एवं पति महापात्र बोली जहाँ को

0: बागीसा जस्य बदने लक्ष्मीर जस्य च बक्षसी जस्यास्ते हृदये संबित तं नृसिंहमहं भजे। यार अर्थ होची जहार मुखरे सरस्वती बास करुछंती, जहांकर बक्ष देशले लक्ष्मी बास करुछंती, जहार हृदय स्वयं ज्ञान आसी अवस्थान करुछंती, सही नृसिंह रूपी भगवान श्री जगन्नाथ को मु प्रणाम करुछी। एटा श्रीधर स्वामी कहले ता अर्थ महालक्ष्मी महाप्रभुंकर बक्षस्थल रे बास करुछंती।
1: महाप्रभुंकर ठारु लक्ष्मी अलगा नुहंती कस्मिन काले,
0: केते बेले से अलगा हे परिबो नाही,
1: एबळकी
0: क्षणंग्न सहते मुक्तुम स्कंद पुराण रे गोटे क्षण भी से महाप्रभु को त्याग करि परिबे नाही, ये कथा स्कंद पुराण रे परिष्कार।
1: महाप्रभु आसिकरी आड़प मंडप रे अवस्थान कले माने लक्ष्मी अछंती,
0: लक्ष्मी रहिबे
1: रहिबे बस,
0: लक्ष्मी छाड़िबे केमि ताक बक्ष देह रे से अछंती, ताल
1: तो से
0: बक्ष स्थल आसी न या
1: से तो रंधन कले आ पाको कले रंधन हला
0: निश्चित महाप्रभु को खाइबार दायित्व महालक्ष्मी कर
1: बस।
0: जदनंग पाचयते लक्ष्मी ही भक्ता स्वयं जनार्दन।
1: अच्छा बढ़िया हला, ए प्रश्न रो उत्तर आमे दे देले। आ गोटे प्रश्न हला जे एठी तो विमला नहंती आड़प मंडप रे, तेनु विमला को समर्पण नहले, समर्पण न हो महाप्रसाद हुए नहीं, तेणु ये कमी महाप्रसाद हूँ विमला नई
0: जो कथाटी आप कहले समर्पण नहले ता महाप्रसाद परिणत तो हुए ना, ये कथाटी संपूर्ण भूल।
1: अच्छा
0: लोक मान मुंडे पशिचे जे वर्तमान आग महाप्रसाद जाकर विमला पाखे समर्पित हेले ता महाप्रसाद परिणत तो हुए कि
1: भोग
0: महाप्रसाद माँ विमला भोजन करती रोष घर ना आप देखिए लक्ष्मी गोटे रोष घर अच्छी बड़दौल किंतु विमला रोष घर ना से कौन करती केवल सी कैबल्य लोलुपिनी तेणु महाप्रभुंकर कैबल्य बाहर से भोजन करती आखिर लगिले जा
1: महाप्रसाद
0: हब हुए ये भूल। अच्छा आम एवं प्रश्न करुँ जे विमला तो ये नहाती खाऊँ केमी शुणु आप विष्णु सहस्र नाम प्रभुंर गोटे नाम देख अदृश्य व्यक्त रूप से निजे हूँ अदृश्य पुणी हूँ व्यक्त रूप आम जहाँ को रथे आणुच व्यक्त रूप कितु से समस्त पाखे अच्छा तोर पासे पासे छंति नंदन तु कहीं करुचु कौ रूप अदृश्य रूप से तेणु एठार कैबल्य लोलुपिनी माँ विमला अदृश्य रूप से रही माँ का पाखे जत महाप्रसाद हो जाए से अदृश्य रूप से पाती।
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपन को। आमर यो जगन्नाथ संस्कृति महाप्रभुंर लीला जिते आलोचना करुचु आमको दुईट कथा को ध्यान देवा पड़ो, गोटे है लौकिक विचार आउ गोटे है तात्विक विचार। तात्विक विचार रे महाप्रभुंकर कौनसी परिवर्तन हुए ना, सी आसती आम जो कही दौचु अनेक समय रे सी जन्म बेदिके आसीचंती बाहुडारे फेरीगला बेलू तांको मन हो नथुबो जिबाकु तेणु महाप्रभुंकर मन टिके विरस होथुबो, ये सब आमर लौकिक विचार एवं गोटे लीला रे आमे ताको ए लौकिक विचार करू।
0: शास्त्र रे कह जाय छी लोकवत तू लीला कैबल्यम
1: ना नहीं सेटा हेले कौन हम कि कहूँ ना आमको टी आनंद मिलू आमको टी आनंद मिलू आम महाप्रभु सहित निजक टे जोड़ी पार्चु
0: आम आमरी भाया से लीला
1: करु तार तत्वटी हूँ देखु जिते प्रिय स्थान हो महाप्रभु सात दिन रु अधिका काल के आड़प मंडप रहंती ना तार कारण हूँ भल लगू थे किंतु से तो मायार अतीत महाप्रभु को माया कुआडे लगे
0: ये किसी क्षण पूर्व आप कहते भल कथा टे कहते मन पका कर्म पाखे ये सब तुच्छ हो जाए आप जो कर्म कर्म करने को संसार को आसी मुख्य तेणु महाप्रभु सीट बसिकी कर्म कर्म स्थान बस एठिक आसिले सात दिन पर्यंत रहिबे किंतु कर्मस्थान हला मुख्य
1: एवं तांको माया स्पर्श करि परिबो नाहि कारण से मायार अधीश्वर सेतिमे गीता रे कहिछन्ति माया अध्यक्षण प्रकृति
0: सुयते
1: सचराचरम हेतु ना नेन कौन्तेय
0: जगत विपरिवर्तते
1: हां तेलो मोर अध्यक्षता रे माया ए जगत को

जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु आपण मैंने द्वितीय केन्द्र रु धारा बरणी शुणुले जो छोट रथ बड़ रथ जो विचार आसूची रथरे कौन सी छोट बड़ न थाए एवं जहार सामर्थ्य को देख महाप्रभुंर बड़दाण्ड में समस्ते रथ टे गड़ेबा को चाहती से भली कई जड़े भक्त गोटे छोटिया रथ तैयारी करके बड़दाण्ड में आणुंट से दृश्य आमर बरणीदाता दृष्टि पड़ा बोली से आपण मानक शुणले आपण जानते आज सारा ओडिशा रे 3000 रु ऊर्ध जगन्नाथ मंदिर अच्छे एवं सबु स्थान रे छोट हो बड़ हो रथ यात्रा होठे तीनोटी रथ होठे गोटे रथ से तीन ठाकुर जाऊँ चतुर्था मूर्ति जाऊँ तेणु यह भाव में जगन्नाथ संस्कृतिर जगन्नाथ उपासनार जो उत्कल भूमि प्रसार हो प्रसार फल बहु स्थान रथ यात्रा आम देखा पाच जो रथ यात्रा सब विधि रक्षा कर विधि विधान को मानि जगन्नाथ जो मूल पीठ श्रीक्षेत्र विधि विधान को मानिकी 3000 स्थान रे रथ यात्रा वर्तमान होटा बहुत बड़ कथा आम पाई ये जो रथ बड़दाण्ड में विजय हवा से श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड हो कि कोरापुट दामनजोड़ी हो कि सावर श्रीक्षेत्र हो कि बारिपदा हो जो स्थान रे भी रथ यात्रा हो रथ यात्राटा हूँ गोटे प्रतीक मात्र ये रथ यात्राटा को आम विचार करने को पड़ो जे आमर मन रूपक बड़दाण्ड में महाप्रभु विजय हेबे एवं एथिपाय गोटे सुंदर गीत अच्छी से गीतटी आम रचना करिसंती से आधुनिक गीत हेले मध्य से गीत भितर गोटे गभीर दार्शनिक तत्वटी अच्छी से गीतटी होची जे बड़दाण्डे चले तब नंदी घोष रथ मन बड़दाण्डे बारे आस जगन्नाथ ये गीतटी को लिखिंती आमर गीतिकवि नंदकिशोर सिंह एवं ताको गाई प्रख्यात गायक दिवाकर महंत तेणु जितेबले बड़दाण्डे चले तुम नंदीघोष रथ महाप्रभु आपण को नंदीघोष रथ बड़दाण्ड में चलुची मोर मनर बड़दाण्डे मध्य प्रभु आपण विजय करंतु ये विचारटा हूँ आमर वैदिक विचार रथे तो बामन दृष्ट पुनर्जन्म नविद्यते जो कहुई रथरे जितेबले आषाढ़ मासरे महाप्रभु बामन अवतार हमें से महाप्रभु बामन होकर जो रथ उपर बसवे से आमर अंतर भितर आम हृदय भितर आम महाप्रभु को आम शरीर रथरे जो धारण करे हृदय रूपक सिंहासन महाप्रभु बस रथ उपर महाप्रभुंर विजय हवा एवं आमर अंतर रथरे आम शरीर रथरे हृदय सिंहासन महाप्रभु विजय हवा ये दुईट कथा जो एकाकार हम से आम अनुभव करवा जे महाप्रभुंर रथ बड़दाण्ड में गड़ुची आमर मनर बड़दाण्ड महाप्रभु विजयी तेणु ये उपलब्धिटी हूँ गोटे बड़ उपलब्धि जो उपलब्धिटी को आमर गीतिकार मैंने अति सुंदर भाव रचना करंदर भाव आम शुणिक मन पुलकित हो किसी समय पूर्व आमर डॉक्टर कल्याणी नंदी आपण मानक कहते जो नर्तक नर्तकी मैंने नृत्य प्रदर्शन करूँ महाप्रभु को नृत्य देखा भल लगे एवं महाप्रभु बड़सिंहार बेले नृत्य देखिकी से निद्रा जाती पहुड़ हमें ये नृत्यटी आमर कौन जानती आमर ओडिशी नृत्य जहाँ को आम कहूँ से ओडिशी नृत्यर पांचटी पर्याय अच्छी गोटे हूँ मंगलाचरण द्वितीयटी हूँ बटू तृतीयटी हूँ पल्लवी चतुर्थटी हूँ अभिनय पंचमटी हूँ मुख्य तेणु जो मैंने ओडिशीर नर्तक एवं नर्तकी नृत्यांगना से माने जो नृत्य प्रदर्शन करती नृत्य विभोर हो जाती ओडिशी नृत्यर एभली एक अवस्था अच्छी जितेबले नृत्य प्रदर्शन करुवा शिल्पी से तल्लीन हो जाए तार मुख्य अवस्था प्राप्त हुए ओडिशी नृत्यर एभली शक्ति और सामर्थ्य अच्छी ये मुख्य प्रदान करने समर्थ तेणु महाप्रभु पाखे ये ओडिशी नर्तक नर्तकी मैंने ये जो नृत्य करुं ये नृत्य मध्यम कौन सी ना कौन सी जगार प्रच्छन्न भाव भितर गोटे मुख्य कामना अच्छी महाप्रभु पाखे नृत्य को नवेदन कर जो पर्याय अच्छी से मुख्य पर्याय को उन्नीत हो महाप्रभुंर श्रीअंगे माँ महाप्रभु भावसत्तार लीन हो गोटे बासना मन भितर अच्छी जोटा महाप्रभुंर अति प्रिय महाप्रभु जिते जानती जे मोर भक्त मो सहित मिसी जावाई चाहूँ एवं तार भितर आध्यात्मिक उत्तरण एभली हलानी

0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक पर्व नुह बर हूँ लक्ष लक्ष श्रद्धालु आस्था विश्वास और भक्ति रे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यह पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मान सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करने आम समस्त दायित्व से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन होवा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय आमको गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवा पड़ो जमीक तटका खाद्य खातु एवं विशुद्ध पानी जल व्यवहार करूँ। बाहर खोल में बिक्री होता खाद्य कृत्रिम रंग दिया खाद्य बासी और दुर्गंध होता खाद्य माछी बसुवा खाद्य एवं पचासढ़ा फल और पनीपरिया आद खातु ना खाद्य खावा पूर्वर एवं पर तथा शौच हवापर निज हाथ को साबुने भल भाव धुंतु। शरीर जल शुष्कतारु रक्षा पाइबापी आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पिंतु सर्वदा पायखाना व्यवहार करूँ एवं परिष्कार परिच्छन रुहतु। अलिया आवर्जना तथा बड़का खाद्य एणे तेणे न पक डबिन व्यवहार कर जरूरकालीन सहायता पूरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752221275 रे जोगाजोग करत एवं आंबुलांस पई 108 को कॉल करत। जय जगन्नाथ।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा द्वारा जनहित रे जारी।
2: जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अति आनंदर कथा आमे वर्तमान देखी पारुचु गोटे शरथावली रे गोटे भक्त निजक हनुमान बेसरे सुसज्जित करी अति सुंदर भावरे नृत्य करपटे नाकचणा द्वार जो नाकचणा द्वार अपेक्षा करिछंती केतेबेले महाप्रभु यही पथ दे रथारूढ़ हेबा निमन्ते आगमन करिवे। आमे मध्य देखुचु अति सुंदर भावरे गोटे मठ जो मठर प्रत्येक वर्ष गोटे विराट बड़ धूपकाठी करिथांती महाप्रभुं सेवारे जो धूप एवं धूप प्रदान करने पथ को सुसमित कुसुमित करने सहित सुगंधित कर वातावरण को आहुरी आनंद पवित्र भूतमय करने निमें शरधा बाली

श्रीमुख चंद्रचा कोरा जय जय देव हरे। महाप्रभु एत सुंदर से सौंदर्य बसीभूत हो समस्ते आज आगमन करी अन्य किछि कारण नाही। महाप्रभु होती दाता कौन दिंती कैवल्य अनेक दुखर भावना को मन भितर धारण करी भक्तटी अंटा भिड़ी आसी जाए मुझे जाऊँगी आज जनईबी कालिया को महाप्रभु जगन्नाथ को आज परी बड़ दंडरे ठिया होई जे सी मोर सब कथा बुझे से दिन बंधु महांती कथा बुझी से दिन दासिया बाउरी कथा बुझी आई कथार दृढ़ता रखी भक्त मैंने आसी बड़दाण्ड को किंतु आश्चर्य हे आपण मैने भक्त सिना अनेक कथा भाविक आसी थाए ये बड़दाण्डर एत कुहक स्पर्श एत भावनात्मक स्पर्श रही भक्त सब भूली जाए ता निज कथा को एथिपाई जे महाप्रभु केतेबेले ना केतेबेले तार से दुख को हरण करनी हरी हरण करनी सी आउ कौन दुख कथा मन पकेब खंडनाथ सर्व दुखानम अखंडानंद दानतः स्वभावात् दारू रूपम हि परम ब्रह्माभिधीयते ए परम ब्रह्मा पाखरु आउ सी तार कौन आउ पाइबा को अछि तेणु यही सर्व रहस्यमय देवता महाप्रभु जगन्नाथंकर आज बाहुड़ा जात्रा रे आमे देखुचे आम केन्द्र आगरे जो भक्त मानंक द्वारा किछि द्रव्य पड़ी जाइछि कागज हेउ पत्र हेउ से सब को उठाई देउछंती स्वेच्छासेवी माने परिमल विभाग से माने जो कथा आसीछंती श्रीक्षेत्र को से माने तां कार्यरे लागिछंती तेणु ये बड़दाण्डर पवित्रता को समस्ते अंगीकार करिछंती हृदय रे बुझिछंती मनरे हृदय रे धारण करिछंती पवित्रता को कहीं जगार पहुँचवा होक्तर गोटे बड़ आस्था एवं बहुत बड़ उपलब्धि यही स्थान पहुँची आपण मैने पहुँची जहाँ मानसिक

0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं यहा होची लक्ष लक्ष श्रद्धालुंकर आस्था विश्वास और भक्ति रे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यही पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मानकर सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्त दायित्व। से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन होबा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़ो। जमीक तटका खाद्य खातु एवं विशुद्ध पानी जल व्यवहार करूँ। बाहर खोल में बिक्री होता खाद्य, कृत्रिम रंग दिया खाद्य, बासी और दुर्गंध होता खाद्य, माछि बसुवा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदौ खातु ना। खाद्य खावा पूर्वर एवं पर तथा शौच हवापर निज हाथ को साबुन भल भाव धुंत। शरीर जल शुष्कतु रक्षा पाया आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पिंत। सर्वदा पायखाना व्यवहार करूँ एवं परिष्कार परिच्छन रुहत। अलिया आवर्जना तथा बड़का खाद्य एणे तेणे न पक डबिन व्यवहार कर। जरूरकालीन सहायता पूरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752222175 जोगाजोग कर। आंबुलांस 108 को कल कर। जय जगन्नाथ।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा द्वारा जनहित जारी।
2: जय जगन्नाथ।
3: जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आम विज्ञापन विरती गला
2: आज्ञा
3: पूर्व आलोचना करते श्रद्धा और विश्वास।
2: हाँ,
3: श्रद्धा विश्वास मान कौन ना जो शास्त्र मान कथा आम आलोचना करुचु से शास्त्र मान विश्वास करवा कहीं विश्वास करवा किए प्रश्न भी करें कहीं विश्वास करवा ना विश्वास करवाई जे साधु संत महापुरुष माने तपस्या एवं योग बल ज्ञान बल जहाँ उपलब्धि करे ज्ञान आमको देमें से भाई तपस्या करानी आमर से भाई ज्ञान ना तेणु जो ज्ञान आमको परंपरा सूत्र में मिली से ज्ञान को आमको अवश्य।

0: गजपति महाराज रथ निकट रे उपस्थित होई सेवा प्रदान करिवे। इति अवसर रे आम केंद्र रो सम्मुख भाग रे
1: वर्तमान जो परिवेश अछि पाग अनुकूल सुंदर पवन बहुचि लोक माने जीवा सिवा करुचंदी लोकंग भीतर जो उत्साह जो उद्दीपना कौन पे उत्साह उद्दीपना
0: आपण गोटे कथा देखंतु श्रीगुंडीचा दिन जिते प्रतिकूल परिस्थिति थिला को लोक कम थिले तेणु भक्त केवे चाहे ना अनुकूल पाग भक्त चाहे ना जगन्नाथ पाखरे से केवल केवल चाहे मो कालिया जोठी मु सेठी सेठी जिते विपत्ति आसु जिते प्रतिकूल परिस्थिति आसु से केवल चाहे मो कालिया जोठी अछि मु दिबारात्र सेही जगार रहिबी जहाँ आज आम देखा पाउछे
1: कने पे गाई गोठ कने जोठी सेठी भक्त माने रुंड होइ कि रोंदी
0: जमिति दोळ हेले विमान बाहरे दोळ ठाकुर को नेगि जिबा पई सेही परि आदि ये जो स्वयं लीला रथ यात्रा ए रथ यात्रा रे महाप्रभु को पाखरे विमान सहित कांधुवाली सहित आमे समस्त हेले जण जण सेवायत भिन्न भिन्न भाबरे आमे महाप्रभु को सेवा को अर्पण करूछे
1: सेही पे मोर विश्वास होउची जे जगन्नाथ धाम रे महाप्रभु जगन्नाथ होचंदी सर्व जनमान्य राष्ट्र देवता श्रीमंदिर रत्न सिंहासन छाड़ी नौ दिन धरिकी महाप्रभु आसी ये जन्म बेदी रे जनकपुरी रे रही आज जो फेरुचंदी ये एक दुर्लभ दर्शन ये एक एभली दर्शन या को अनुभव कले ही भक्त माने जानी पारिबे
0: जानती जगन्नाथ महाप्रभु गोटे मनीष पर आउ गोटे उदाहरण आम दे पारिबा ये जो टिके समय पूर्वर आम श्रोता बंधु को आम सूचना देखु सिंधुक गला तीन रथ उपरकूनोटी सिंधुक से सिंधुक कौन महाप्रभुंर पाट वस्त्र विभिन्न अलंकार साज सज्जा दैनंदिन नीतिकर्म पर साज सब रही आम जमी बाहर को गले
1: धरिकी जाऊ भगवान
0: चंदन टिके दरकार सिंदूर टिके दरकार वस्त्र विभिन्न प्रकार दरकार ये सब जो सुरक्षित जिनस रखापी गोटे पात्र टी आम सांगे नहीं जाऊे आटाच कथा जो आप कहले महाप्रभु गोटे बड़ पात्र नहीं जाऊँ सिंधुक
1: मान समग्र पृथ्वी रे एभरी देवता विरल
0: समय
1: पृथ्वी रे एभरी देवता विरल जी तक जिनस पत्र नहीं कामित रथ रे कामित सिंधुक सी निजे स्वयं काठ तेणु वृक्ष देवता वृक्ष को ये प्राधान्य वृक्ष को ये परिमाण से मुंडे बसला भाई रखिंट अनुभव कले ही आम जानपर
0: भगवत गीतार महाप्रभु गोटे कथा कही हे अर्जुन मम माया दूरतेया मो माया को जानवापी अति कष्ट आो माया को जापे किए ना सात वर्षर बालक ध्रुव जापे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यही जो ओम नम भगवते वासुदेवाय छोटिया मंत्रटी को जप करी ध्रुव पाईगले मत मु माया विस्तार करी ना तेणु जी भक्त हेब
1: से ऊर्धर जाकि भगवान श्रीचरण
0: सी मत जापर जी सेवा सेवक हेब सी मत जापर तेणु
1: जाऊ जगन्नाथ महाप्रभु जी सुंदर देखा जाते बेश जमती अति सुंदर आकर्षणीय एवं आसंता काली तो आप देखिए सुना बेस महाप्रभु क्विंटाल क्विंटाल सुनारे सज्जित होकर सुना बेस श्रद्धा भक्त मान को दर्शन देवे आउ दि चार घंटा पर देखिए आहरे सुना
0: माँ कोल आसी माँ पाखु आसी निश्चय सुंदर देखा जी माँ पाखु जो संतान आसे आपण भल भाव जानती तार सौंदर्य बढ़ी जाए कर्म क्षेत्र जन जो फेरी थाए तार मुह सुखी जाए तेनाली महाप्रभु जो माँ कोल आसी से सौंदर्य निश्चित देखा जी आउ गोटे कथा आप जानते माँ पूरा कही जिते दौथी से खाऊ नसु खीब तोर हाथ लोके कहुतिबे खाइबा ठाकुर नीला चले जगन्नाथ
1: तेणु मो प्रताप बाबू भारत वर्षर विभिन्न जगह बुली किंतु ये जगार जो खाइबा जो पिंधिबा आनंद रहिबा परस्पर भितर भाईचारा भाव सृष्टि करी वसुधैव भाव भावधारा रे उद्भुत होई समस्त को आपणार करिनबा ये ज्ञान आउ कोठी मिलिबो नाही
0: जेते बेले महास्वार को आमे पचारिछु से कोठस्वार महास्वार से माने कहिचंती आमे मध्य निजे अवगत नुह महाप्रभु केते प्रकार अन्न व्यंजन बा केते प्रकार सुखिली भोग भोजन करुचंती तेणु ताकू गोटे साधारण

0: ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ। ଉପସ୍ଥାପନରେ ଥିଲେ ଅଙ୍କିତା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ସିପ୍ରା ମିଶ୍ର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ

0: खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों, अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: सुनले हिंदी संवाद आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी पूरी केन्द्र प्रचारित होउछि 103.4 FM माध्यम रे। स्टूडियो घड़ी रे समय वर्तमान संध्या 6:05:18 वर्तमान कही रखुछु आज संध्या एवं आगामी काली प्रातः अधिवेशन रो कार्यक्रम रो सूचना।

0: ये कस्टमर केयर कोठी। हाँ मैडम।
1: आज्ञा।
0: ये केवाईसी अपडेट पे मो पाखो को बारंबार मेसेज काई के आसुचे?
1: कारण बैंकिंग सेवा गुड़ी को पाई निर्धारित समय रे केवाईसी अपडेट करिबा उचित।
0: किंतु ये हबो केमिति?
1: जदि परिचय किंबा ठिकणा रे कोनोसी परिवर्तन नाही तेबे निज बैंक किंबा एटीएम किंबा बिजनेस करेस्पोंडेंट माने बीसी को पाखो को जानतु किंबा बैंक रे पंजीकृत ईमेल किंबा मोबाइल नंबर किंबा मोबाइल बैंकिंग ऐप किंबा चिट्ठी माध्यम रे एहारो स्वघोषणा दियंतु।
0: अच्छा आउ जदि कोनोसी परिवर्तन थाए तो
1: से क्षेत्र रे परिचय एवं ठिकणा रो सर्वशेष प्रमाण दे केवाईसी अपडेट करै परिबे।
0: बस बुझी गली।
1: निजरा केवाईसी अपडेट करिबा पई निजरा निकटस्थ ग्राम पंचायत रो कैंप किंबा बैंक शाखा को जानतु।
2: आरबीआई कहे
1: सचेतन होवंतु सतर्क रहंतु।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आज ही आयुष्मान आप डाउनलोड करी आयुष्मान कार्ड बनातु अधिक सूचना पाई 1455 नंबर को कॉल करंतु।
1: ओडिशा सरकार समवाय विभाग तरफ राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानको सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी और हरड़ चाषर बीमा पंजीकरण कराइनियंतु। भाग चाषी ऋणी और अणऋणी चाषी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैम्प बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकड़ जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकु पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।

0: शिक्षित एवं कुशली युवक युवती मानू सीधासख भाव जब थी प्राप्त हो पार।
1: सूचना अनुसार एचसीएल टेक राज्य में एक डेवलपमेंट सेंटर प्रतिष्ठा कर द्वारा आईटी इकोसिस्टम सुदृढ़ हो सर्भम एआई राज्य में एआई ऑप्टिमाइज्ड डाटा सेंटर प्रतिष्ठा कर दुईट प्रकल्प पर आसंता पांच वर्ष मध्य 15,000 कोटी टंका विनियोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता रविवार पूर्वाह्न 11:00 बेले आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में उद्बोधन देबे। एहा मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 136वां संस्करण हेबो। एहि कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल आप उपलब्ध हेबो। एहा मध्य आकाशवाणी डीडी न्यूज पीएमओ एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल रे सीधा प्रसारण हेबो। हिंदी भाषा रे प्रसारण परे आकाशवाणी रे एही कार्यक्रम रो आंचलिक भाषांतरण प्रसारण करा जिवो। राति 8:00 रे आंचलिक भाषांतरण रो पुनः प्रसारण करा जिवो। राज्य में वैद्युतिक जान इभी गतिशीलता को प्रोत्साहन देवाई केन्द्र सरकार भारी शिल्प मंत्रालय पक्षर् सार्वजनीन इभी चार्जिंग स्टेसन विकास पर पीएम ई ड्राइव योजन 40,50,75,740 अनुदान राशि को मंजूरी मिली। वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना कहते पूर्वोदयर प्रवेशपथ ओडिशा को केन्द्र सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। परिवेश सुरक्षा और इंधन संचय पर समग्र देश में इभि व्यवहार वृद्धि पाई। गत जून मासरे ओडिशा रे सर्वाधिक प्रतिशत इभि बिक्री होता श्री जेना कहते। ढेंगानाल जिले में बाल्य विवाह को रोकने जिला कार्य योजना संपर्कित एक सचेतनता कार्यक्रम स्थानीय डीआरडीए सम्मेलनी कक्ष में अनुष्ठित हो जाएगी। अतिरिक्त जिलापाल रमेश चंद्र सेठी अध्यक्षता करी बाल्य विवाह और शिशु चालान प्रतिरोध चिह्नट पुनर्वास एवं आईनगत पदक्षेप संपर्क में गुरुत्वारोप करते। देशर अर्थनीति और विकास प्रक्रिय आयकर गुरुत्वपूर्ण अवदान संपर्क में सचेतनता सृष्टि उद्देश्य आज जातीय आयकर दिवस पालन कर 2010 मसीह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा यह दिवस को आनुष्ठानिक भाव पालन कर। आयकर राष्ट्र निर्माण एक सशक्त भित्तिभूमि प्रत्येक निष्ठापर करदाता अवदान देशर विकास जनकल्याण भित्तिभूमि एवं आत्मनिर्भर भारत संकल्प को नूतन गति प्रदान करिथाय। नागरिकों ठारु आदाय होथिबा करराशि शिक्षा स्वास्थ्य प्रतिरक्षा कृषि रेलपथ सड़क पानीय डिजिटल भित्तिभूमि और विभिन्न जनकल्याणकारी योजन व्यय कराए। उत्तर पूर्व बंगोपसागर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा होबार संभावना रही। आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा होने केन्दुझर और मयूरभंज जिला को आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर् सतर्क सूचना जारी कर। 24 जिले में वज्रपात सह वर्षा होने पाणीपाग केन्द्र पक्षर् सतर्क सूचना जारी कर। हीराकुद जलभंडार जलस्तर संध्या 6:00 सुधा 614.2 फुट रही। मुख्य संवाद पुणि थरे बाहुडा जात्रा रे आज पुरी रे सिंहद्वार अभिमुखे चतुर्था मूर्ति। प्रश्नपत्र प्रघट मामलें फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रतिष्ठा नहीं चिट्ठा बिल को केन्द्र कैबिनेट रो अनुमोदन। देशर तीनोटी रासायनिक पार्क प्रतिष्ठा पाई भव्य रसायन योजना को मंजूरी। राज्य में प्रतिष्ठा हेबो ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर एवं एआई पार्क एवं राज्य में सार्वजनीन इवी चार्जिंग स्टेसन विकास पाई पीएम ई ड्राइव को केन्द्र सरकार मंजूरी। आंचलिक संवाद आज इतिकी।
2: आकाशवाणी कटक आजिर प्रसंग
3: आजिर प्रसंग जन्मवेदीरु रत्नवेदीकु यात्रा आलेख्य डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र महांती उपस्थापनरे मु सत्यरंजन महापात्र। वेद हेउछि आम प्राचीन विश्व संस्कृतिर एक आद्य ग्रंथ। वैदिक जुगरु आम संस्कृतिर रथ और रथयात्रार वर्णना थिबा देखाजाए। वैदिक मत अनुसारे सूर्यदेव समग्र विश्व भ्रमण पर सप्ताश्वजोचित रथ व्यवहार करुथले। कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र रे विभिन्न देवतांकर व्यवहार लागुथवा रथ विषय वर्णना रही। देवता मानंकर पई देवरथ बा मरुत रथ आमोद प्रमोद तथा क्रीड़ा कौतुक पई पुष्परथ युद्ध उद्देश्य रे व्यवहृत रथ को संग्रामिक वैनायिका कर्णरथ और न्यायाधीशों निमन्ते योग्य रथ परिभ्रमण निमन्ते परिघटिका रथ आदिर वर्णना रही। एमितिक मर्त्यरु स्वर्ग को यात्रा करिया पई रथ गर्भक नामक रथर व्यवहार होइथिबा जणा जाय।

0: हाँ ये कस्टमर केयर कोठी। हाँ मैडम
1: आज्ञा।
0: ये केवाईसी अपडेट में ये मो पाखो को बारंबार मेसेज काई के आसुची?
1: कारण बैंकिंग सेवा गुड़ी को पाई निर्धारित समय रे केवाईसी अपडेट करिबा उचित।
0: किंतु ये हबो के मिति
1: जदी परिचय किंबा ठिकाना रे कोनोसी परिवर्तन नाही तेबे निज बैंक किंबा एटीएम किंबा बिजनेस करेस्पोंडेंट माने बीसी को पाखो को जानतु किंबा बैंक रे पंजीकृत ईमेल किंबा मोबाइल नंबर किंबा मोबाइल बैंकिंग ऐप किंबा चिट्ठी माध्यम रे एहारो स्व घोषणा दियंतु।
0: अच्छा आउ जदी कोनोसी परिवर्तन थाए तो
1: से क्षेत्र रे परिचय एवं ठिकाना रो सर्वशेष प्रमाण देई केवाईसी अपडेट करै परिबे।
0: बस बुझी गली।
1: निजर केवाईसी अपडेट करिबा पई निजर निकटस्थ ग्राम पंचायत रो कैंप किंबा बैंक शाखा को जानतु।
2: आरबीआई कहे
3: सचेतन होवंतु सतर्क रहंतु।
4: सुन चंदी कार्यक्रम आकाशवाणी पुरी केंद्र रो बर्तमान आसंत शुणा ओडिया चलचित्र गीतर कार्यक्रम प्रथम शुणतु भक्त सालवेक चलचित्र गीतटी कंठदान करिछंती भिकारी चरण बड़।

0: अपा भजनटि किंतु बढ़िया थिला आजि बाहुडा उपलक्षे जो भजनटि तमे सुनैल सेई भजनटि आमर भक्ति कु दुई गुणा बढ़ै देला
1: जा हो तेबे एते सुंदर भजन पई आमे कंठशिल्पी गीतिकारंकु धन्यवाद दे आलोचना को जिबा
0: हेले आजिर आलोचनाटि कोन अछि से विषय त टिके बुझै दियो
1: वर्तमान होचि आमर खरीफ चासर समय भाई भोनी माने चास माने मुख्य जमि रे धान रोइबा पूर्वरु जो तळी पकै थिबे जमि रो चास केमति करिबे माटी रो किभले भाबरे जत्न नेबे जा फळरे कि तांकर उत्पादन बढ़िबो अधिक अमल हबो अधिका धान से माने पाइबे कि जो जो भाई भोनी माने पनीपरिबा फसल करछन्ति से माने केमति पाइबे वर्तमान लक्ष्य हला माटी रो किभले भाबरे आमे अधिका उत्पादन पाइबा
0: बहुत बढ़िया विषयटा माटी को ठीक भाबरे पाग करि पारिले ठीक भाबरे तळी प्रस्तुत करि पारिले आ तळी को रोई पारिले अमलटी भलो हबो आ सेइ विषय रे आजरा आलोचना
1: तले डेरी करिबानी सुनिबा
0: सुनिबा
1: चना होचे सफल पद्धति रे जैविक कृषि पई माटी रे जीवाणु सार रो प्रयोग हो माटी नहे से माटी मार जत्न जेभले भाबरे आमर नबा कर्तव्य एवं दायित्व माटी रो मध्य सेइ भले दायित्व नबा तार जत्न नबा किभली भाबरे ताको आगामी पीढ़ी पई साइतिबा ए आम समस्तंक पई प्रधान कर्तव्य आज आम समस्त अनुभव कलुणि जे मूर्तिका को किभली भाबरे आम सुरक्षा दबा जहाँ फल कि परवर्ती पीढ़ी पई आम पैसा नुहे मूर्तिका ही साइतिकरी रखिबा तेबे ए मूर्तिकार किभली सुरक्षा करा जाई पारिबो ताको आखि आगर रखी आज आम गोटे आलोचना रखीछु सफल जैव कृषि पाई माटी रे जीवाणु सारर प्रयोग ए संपर्क रे आलोचना करिबा पाई आज आम स्टूडियो रे आमे आमंत्रण करिछु डॉक्टर ज्योतिर्मय दास को जे कि सहकारी गवेषिका अछंती मूर्तिका विभाग कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय भुवनेश्वर रे मैडम नमस्कार
2: नमस्कार मैडम
1: आज जो आलोचना मैडम रहुछि सफल जैव कृषि पई जीवाणु सारर प्रयोग विशेषज्ञ मानकर मत हला किभली भावरे आमे रासायनिक सारठु दूरे केवल जैविक सार प्रयोग करि विभिन्न फसल उत्पादन करिबा जहाँ फल रे कि माटीर मान सुरक्षा रहिबो आमर जलवायु तार सुरक्षा हेपरिबो पैसा कम खर्च हेबो एवं जो फसलटी उत्पादन हेबो जहाँ को आमे परवर्ती समय रे खाद्य भावरे ग्रहण करिबा आम शरीर मध्य सुस्थ रहिबो तेणु एते गुड़िए समस्यार समाधान आमे पाउछे समस्त वर्तमान अनुभव कलुणि तबे आपण विभागीय अधिकारी अछंती गवेषणा ए संपर्क रे करुछंती ए उपरे आपण अधिक कहि पारिबे आपण कहंतु जैव कृषि पई जीवाणु सार रो आवश्यकता केते दूर रहिछि तबे से जैव कृषि कोन एहार उपकारिता कोन रहिछि से संपर्क रे कुंतु
2: धन्यवाद मैडम कृषि क्षेत्र रे रासायनिक सार रो प्रयोग बिना जे चाष पद्धति ग्रहण करा जाउछि ताकु जैव कृषि कहा जाए साधारणत कृषि पर एथिरे रासायनिक सार कीटनाशक रोग ओ बाळुंगा दमनकारी रासायनिक पदार्थ रो व्यवहार करा जाए नाही एहार उपकारिता हेउछि एहा माटी रो स्वास्थ्य उत्पादिका शक्ति ओ परिवेश सुस्थ रखिबारे साहाय्य करिथाय एहा व्यवहार करिबा

0: प्रधानमन्त्री किसान मानधन योजना द्वारा क्षुद्र नाममात्र कृषकङ्कर भविष्यत हव सुरक्षित
1: आउ 60 वर्ष वयसरु मासिक 3000 टंका पेन्सन हेब सुनिश्चित
0: 55 टंकारु 200 टंका पर्यंत मासिक किस्ती दै प्रवेश करि परिबे 18 रु 40 वर्ष वयसर कृषक
1: एई अंशदायक योजना रे सरकार देबे समान भाबरे योगदान
0: समस्त कृषक भाई भौनी एही लाभदायक योजनारु लाभ पाई जनसुविधा केन्द्रकु जानतु
1: आउ निचर निशुल्क नामांकन करंतु
0: प्रधानमन्त्री किसान मानधन योजना अन्नदातार परिश्रमकु सम्मान पेंशन द्वारा सुरक्षित सेमानंक जीवन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित रे जारी।

0: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
1: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: विज्ञापन पर रहा गोटे चाषी भाई अनुभूति कथा
5: शुणा अनुभूति कथा
4: कथा कौन की अनाम भाई कह नुआ चाषी देखुची सी पिजुली गच्छ सब लगे।
5: अरे वाह,
4: आजिकल देखुथ रास्ता कड़ मान बड़ बड़ पिजुली लगुचे कौन कौन थाई पिजुली
5: थाई पिजुली
4: सी जो पिजुली लगे केमी लगे कौ मुंड को बुद्धि आसला करने के रोजगार कर संपर्क से निजस्व अनुभूति आमको कह
5: बढ़िया कथा टा ये ताहले चलो भाई को अनुभूति सुनिबा।
4: भाई आपन को परिचय दियंतु।
6: आज्ञा नमस्कार, मो ना होची शरचंद्र दास, गां होची बेरोई पोस्ट दंडीपुर गोपीनाथपुर पंचायत। पिजुली चाष करी एकर बिल उपरे 800 गछ लागिछि। विभिन्न प्रकार सार प्रयोग होउछि, सार प्रयोग रे दि प्रकार वैरायटी लागिछि, से होउछि थाई 7 ताइवान पिंक जोडे वैरायटी लागि।
4: तबे भाई ए जो ताई 7 आउ ताइवान पिंक
6: आज्ञा
4: ये दीटा जाको जो वैरायटी आपन कोठ आनिले
6: ये जाइकि अनुगुल ठो आमे ताकु संग्रह करथुले चारा
4: ए 800 चारा
6: आपण
4: केते चारा लगेले ना किछि चारा नष्ट होइ जिवार संभावना थिला ना जहा लगेले से सब तक अछि
6: चार 10 टा कि 15 खंडे गछ नष्ट होइथिला।
4: हां
6: किंतु आउ सब गछ अछि
4: पाखे पे केते वर्ष होलानी चास करलेनी
6: 3 वर्ष को चलला
4: एबे 3 वर्ष
6: होउछि
4: फल केते दिन होला देलानी
6: 6 मास माइनस कर दियंतु आउ जो तक होला 2 वर्ष रो फल पाइछो आमे
4: 2.5 वर्ष त माने 6 मास रे पिजुली गछ फल दबो
6: आज्ञा से तो चारा बेलु कसिया तापरे लगेला परे से तो गच्छ तो स्ट्रेंथ नहले फल धरिबा पई कि शक्ति तार रहे नै तेणु से 6 मास ताकु छोडा जाईतला छोडा जाईकि प्रूनिंग हेतला डाळ अगगुडा सब कटा हेतला जेते ब्रांच आसीबो सेते फल तार आसीबो से गच्छटा टिके हुष्टपुष्ट होई टाण हेले फलटा छाडिलु छाडला परे वर्षक परे आय आसिला कोन।
4: अच्छा आपण जो 800 गच्छ गोटे थरे आपणकर वर्षक केते थरो से फल दउछ
6: 3 थरो
4: 3 थरो 4 मास रे
6: थरे आज्ञा
4: जो 4 मास रे थरे तार के समय
6: एमती किछ अछि कि एई समय रे फळिबो ना नाही नै तो सेमती जेमती हमरो जर्सी गाय रासायनिक दबा को मना एतिक पई कि गच्छ पचेबो चंचल तार परमायुटा नष्ट होइबो एटा लॉन्ग लास्टिंग करिवो ए सारे रे हमरो अच्छर परमायुटी बढी रहइबो।
4: आ तबे जैविक सार हिसाब रे आपण कोन दउछन
6: गोटे गच्छ उपरे दउछु आमे 6 किले गोबर खत तापरे निंब पिडिया 500 ग्राम सोरिसो पिडिया 500 ग्राम सुपर फास्फेट 250 ग्राम
4: एमते दउछन
6: आज्ञा
4: जेते बेले गच्छटी आपण लगेले से जो जमी आपण कहछन एकरे जमी रे आपण 800 गच्छ लगेछन
6: आज्ञा।
4: अच्छा तारो व्यवधान केते रखिले जेतले गच्छटा बड़ हबो से तारो झंकाळिया हबो
6: आज्ञा
4: तणो केते आपणकर व्यवधान रखिले से जेते झंकाळिया हेले बे अन्य गच्छ उपरे ए गच्छर प्रभाव पडिवनी
6: सेइटा को त आज्ञा से 5 फुट रे कहिथिले डिस्टेंस 5 फुट रे 5 फुट रखिया पई किंतु आमे ताको 6 फुट रे 6 फुट रखिछु
4: एबे सब झंकाळिया होउ
6: झंकाळिया हे जाउछि 3 फुट रे ताकु प्रूनिंग करा जाउछि प्रति
4: कोटा कांछन
6: 4 मासे रे से काटिला पर जेते ब्रांच आसीबो सेते फल तार अधिकार रहइबो
4: गोटे गच्छ आपन को केते फल दउछ गोटे सीजन रे धरो 4 मास रे जो केते फल दिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर

खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूर वीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

0: प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: सुनले संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र आपण ट्यून कर आकाशवाणी पूरी 103.4 एफएम रे
2: ओडिशा सरकारंक समवाय विभाग तरफरु राज्यर समस्त कृषक भाई भौणी मानकु सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी और हरड़ चाषर बीमा पंजीकरण कराइनियंतु। भाग चाषी ऋणी और अणऋणी चाषी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैम्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चाषी पिछा 5 एकड़ जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकु पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
1: श्रद्धांजलि स्टूडियो घड़ी समय वर्तमान राति 8:16:28 आसंद शुणा हिंदी चलचित्र गीतर कार्यक्रम प्रथमे कंठशिल्पी अच्छा उदित नारायण और अलका याग्निक संगीतकार नदीम श्रवण चलचित्र आ अब लॉर्ड चले

0: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତଳେ ଯାଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 8:45 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4-4-1-6 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीति

0: करण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय

0: बंधों की समीक्षा की और व्यापार निवेश स्वच्छ ऊर्जा संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्य प्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत

0: सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के होंगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both Houses of Parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
2: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार। गीतांजलि
0: नमस्कार। हेलो आकाशवाणी पूरी कार्यक्रम, आपण को परिचय दियंतु।
1: महापात्र फ्रॉम जगतसिंहपुर।
0: अच्छा गीता भौणी, आपण तो आमर जने पुरुणा श्रोता, केमती अछंती आपण?
1: मु तो भल अछि, आपण केमती अछंती?

0: प्रभु उद्धार कर मते देख देख कमली धोबला पेजसर मध्यरे कालिया पुरुणी साग से श्वेत पद्मडला ताकु मु भुंजीबे किपरि ए शंख चक्रधारी माधव मुकुंद मुरारी देवता दईता पूजित
1: ଜଗନ୍ନାଥ।

0: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ଗୀତ, କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଶିଳ୍ପୀ ସୋନୁ ନିଗମ, ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା ବାସୁଦେବ ରଥ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क